0: हेमंत कुमार बार बार आएंगे, जितनी बार आप चाहेंगे उतनी बार। और सबसे पहले जो मैसेज हमें मिला है, आज का पहला मैसेज रेखा शाह का है। और रेखा शाह क्या चाहती हैं?
1: हेलो परवीन जी, अस्सलाम वालेकुम, रेखा शाह बोल रही हूँ। जुमा मुबारक, आप कैसी हो? सबसे पहले तो बेमिसाल अंदाज के सभी लिसनर्स को हैप्पी फ्राइडे बोलना चाहती हूँ। और दूसरा, आज सीमा सरकार अपना जन्मदिन मना रही है, तो मैं उन्हें विश करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू विश सीमा सरकार अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हर। और दूसरा, परवीन जी उसका एक फेवरेट गाना है, तो मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ। आप उसके लिए ये गाना ज़रूर लगाना। मूवी का नाम है खुद गर्स और गाने का वर्डिंग्स इस तरह से है, आपके आ जाने से। वो सीमा सरकार का फेवरेट गाना है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप सीमा सरकार के लिए ज़रूर लगाना। ओके बाय।
0: समन, आप सब जानते हैं सीमा सरकार अली मंजी की बेवी, और कितने हमारे साथ हमेशा से जुड़ी रहीं, कितने बरस ईस्ट एफएम के साथ उन्होंने काम किया। आजकल नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने किया आला काम था। सीमा सरकार हमारी बॉस भी थी। ज़रूर रेखा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जो भी सीमा सरकार के साथ समन तब भी जुड़े हुए थे, लिसन उनके प्रोग्राम को भी सुनते थे, ब्रेकफास्ट का शो करती थी, तो प्लीज़ उनको कॉल करके भी आप खुद बजाते खुद कर सकते हैं विश। और यहाँ खलील जिब्रान, अ कोट फ्रॉम खलील जिब्रान, कहते हैं कि अब भी वर्क्स हर होल लाइफ फॉर बेरली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी। समय ये जो मधुमक्खी होती है सारी उम्र मेहनत करती है सिर्फ चंद कतरों के लिए शहद के। She does not know how small her share is. She simply visits flower after flower, doing her gentle part, trusting the hive. And somehow, from all that smallness, sweetness is the jar. Kehte hain, maybe that is how goodness works. No single kindness looks like much, but together, drop by drop, they sweeten the whole world. Salma, bahut shukriya aapka. Aur Rupal? रूपल ने फ्राइडे जुमा मुबारक सबको कह दिया। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एवरी न्यू कार इन द यूएस विल बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव टेक दैट पुट्स कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस ऑन द ड्राइवर बाय 2027। समय जो भी गाड़ी चलाएगा अमेरिका में, उसको एक सिस्टम गाड़ी में नस्ब करना पड़ेगा जिसके जरिए आपको देख सकेंगे आप क्या कर रहे हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो भी पता चला लेंगे। लेकिन कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस कोई नहीं चाहता, समझ, कि सारा वक्त आप पर कैमरा हो। शमीम, थैंक यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका। परवीन जी, विशिंग एवरीबॉडी जुमा मुबारक। अर्ज किया है, जिंदगी इश्क में गुलाम हो जाती है, बेवफा सरेआम हो जाती है। मोहब्बत करो तो कहते हैं पैसा करना लेना मेरे दोस्त, मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना, हाँ मोहब्बत करो तो पैसा कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि गरीब की मोहब्बत नीलाम हो जाती है। वाकई वाकई ये बिल्कुल सही अमीर अली राना आपने कहा है। वन ऑफ द कंडीशंस के जो ख्वातीन रखती हैं समन प्यार के लिए, वो प्यार भी नहीं होता। भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन, जुमा मुबारक सभी को। रंजन विनोद खुशी से झूम रही हैं एक गाने के बाद, आगे भी आपके आएंगे, काफ़ी गाने आएंगे आपको।
2: प्रवीण जी, बेकरार करके हमें यूं न जाए, ये गाना फिल्म 20 साल बाद का है जिसको हेमंत कुमार ने गाया है और जिसको शकील बदायूनी ने लिखा है, उसकी धुन हेमंत कुमार ने बनाई है। ये गाना बिश्वजीत पे फिल्माया गया है, गाना अच्छा लगा।
0: बहुत खूब। और बिश्वजीत पे बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, क्या बात है।

0: और क्या है पर्दे पर पहले देखना है कि जी हाँ सोनल मोदा बहुत शुक्रिया आपका और वासुदेव हिरानी आपने कहा है कि ये जो योगिनी एकादशी है ये गुजरात में ज़्यादातर मनाई जाती है वासुदेव अगर ये सही है मेहरबानी आपकी और यहाँ आई हैं मुझे लगता है
1: गुड मॉर्निंग परवीन जी You just mentioned about Seema Sarkar Manji. She was, yes, a radio presenter, and I have been listening to her ever since then. But just a little more information. She is Noni Aliboy from Kisumu's nephew's wife. In fact, Noni used to sing songs on the East FM, And her nephew also was a radio presenter. Thank you. Shukriya Salma Ahmed Kisumu.
0: Very good. Happy birthday to Seema Sarkar. Once again, Salma Meherbani. Bharat Gangaram, kehte Lord Krishna ka Shamarpreet hai. Ye Ekadashi aur Sanatan Dharam. अच्छा सनातन धर्म में भी है एकादशी ओके थैंक यू भरत गंगाराम आपकी तस्वीर अच्छी है जुबिन हिरानी गुड मॉर्निंग कहते हैं कि शायर आराम की तलाश में है हालात पैसे की तलाश में दिल अपनों की तलाश में और मैं शांति की तलाश में वाह जुबिन हिरानी कमाल कर दिया सुबह सुबह और आपने ये भी ये बहुत अच्छा था समझ जो ये इन्होंने लिखा है कहते हैं कि देखो शायर आराम की तलाश में है शायर होता है कवि तो कहते हैं हालात पैसे की तलाश में दिल अपनों की तलाश में और मैं शांति की तलाश में जबीन हिरानी अनयूजुअल ऐसी बातें समझ हमें अच्छी लगती हैं ना कि वेरी गुड गुड गुड सॉन्ग गुड मॉर्निंग नहीं आप ऐसी बातें करें जो लोगों ने बहुत देर पहले शायद सुनी हो या ना भी सुनी हो आपने कहा हिंदूज आर ऑब्जर्विंग अ मेजर फास्ट टुडे आज उन्होंने उपवास किया रोजा रखा हुआ है क्यों योगिनी एकादशी के लिए दिस स्पेशल डे इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु जी हाँ लॉर्ड विष्णु को याद किया जाता है डिवोटीज फास्ट टू सीक फॉरगिवनेस फॉर पास्ट मिस्टेक्स जी आज माफी मांग रहे हैं जो लोग इसमें मानते हैं एकादशी के दिन लॉर्ड विष्णु की याद में और कहते हैं कि आगे भी उन्हें तंदुरुस्ती मिले और वगैरह वगैरह ऐसी दुआएं करते हैं आज एमएल विश्वकर्मा बिहेवियर इज ऑलवेज बेटर देन नॉलेज मुझे तो लगता है कि नॉलेज के बगैर तो बिहेवियर भी ऐसा वैसा ही होता है
2: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
3: East FM.
2: Kenya's premier
3: Asian mix.
2: Asian mix.
3: It's 10:22.
4: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read The Star.
5: This is the one that we all wait for. The one that transforms and upgrades your living room, kitchen, bedroom, your entire house without breaking the bank. The big annual sale at Tile and Carpet and Tuck. Tiles, flooring, fabrics, furniture, decor, roofing solutions, and many more.
6: With big discounts.
5: There's only one sale. The big annual sale. 15th June to 18th July at the Tile and Carpet and Tuck branches countrywide. Hurry while stocks last.
7: The Tile and Carpet annual sale. It's big!
8: Kenya's premier Asian mix continues.
9: East FM. Kenya's premier Asian mix.

बेमिसाल अंदाज। और यूसुफ भट्ट कहते हैं कि क्या हिम्मत कुमार, इनकी अपना इनका अंदाज था, अपनी स्टाइल और अपना म्यूजिक, बिल्कुल बड़े टैलेंटेड थे यूसुफ भट्ट हिम्मत कुमार। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इंजॉय कर रहे हैं सोनल। हैप्पी बर्थडे टू सीमा सरकार, रसिला। परवीन जी, वाइल रिलीजिंग हिज न्यू पेट्रियोटिक सॉन्ग एक अकेला हिंदुस्तानी दो मिले तो हिंदुस्तान ऑन वर्ल्ड म्यूजिक डे, लिरिसिस्ट गुलजार सेड फॉलोइंग अ कॉन्वर्सेशन विद कंपोजर सुरेंद्र सोम्यजीत, ही रियलाइज्ड इंडिया डिडंट हैव एनी न्यू पेट्रियोटिक एंथम इन अबाउट 7 decades। रसीला, क्या बात कही है आपने। आपने कहा है कि हिंदुस्तान में देशभक्ति के 70 बरसों में कोई काबिले तारीफ नगमे नहीं लिखे गए। ये सही बात है, बिल्कुल। जो लिखे गए थे वो शुरुआत में ही लिखे गए थे। द हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ योगिनी एकादशी टुडे, डेडिकेटेड एंटायरली टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिवोटीज टू रिपेंट फॉर पास्ट मिस्टेक्स एंड प्योरीफाई देयर माइंड्स। ओके, बहुत अच्छे नाजमीन हैं कि नाजनीन हैं, नाजनीन हैं जी, मेहरबानी आपकी। चंद्रिका वासंत गोसाई इंजॉय कर रहे हैं बहुत। रमेश हरिया, आपको और सभी को जुमा मुबारक। आज हमारी सारी फरमाइश पूरी हो जाएगी हेमंत कुमार के साथ। आप हेमंदा के गाने सुनाते जाइएगा, हम हमारी लिस्ट में टिक करते जा रहे हैं। ओके, ग्रेट। पर वो बहुत बहुत सैड जो है ना, वो हम किसी और दिन सुनाएंगे। रोजीना मावजी, आपने कहा है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान है। वाह, जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला है तो उड़ान भी होती है। और कहते हैं कि घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बढ़ती रहती है। और आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। बहुत अच्छे रोजीना माव जी। और एमएल विश्वकर्मा, ना तुम हमें जानो, ये तो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मेरा फेवरेट है। एमएल विश्वकर्मा, आपको डेडिकेट किया, आपने एंजॉय भी किया है। आगे नीला शेत की बात थोड़ी

और बहुत दो बातें अच्छी हुई हैं, एक तो यूसुफ भट्ट ने सवाल आपसे किया है और दूसरे कृष्ण सरन ने लंदन से कॉल किया और कहा है कि देखो आपने कहा कि 70 साल से कोई पेट्रियोटिक गाने लिखे नहीं गए, कंपोज नहीं किए गए, उसकी वजह ये है कि अपनी मट्टी के साथ भी प्यार कम होता जाता है। समझ इसकी वजह क्या है?

0: और मंजुला गोरसिया का भी सवाल है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आपको पूछते हैं। उन्होंने कहा है कि आज किसी की डेथ एनिवर्सरी, 12 साल हो गए उनको गए, और उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल एक फिल्म में किया था, जिनको दुनिया से गए अब कितने साल, 12 हो गए हैं।
1: हेलो परवीन जी, सबसे पहले आपको और सभी लिसनर्स को जुम्मा मुबारक, सीमा सरकार को हैप्पी बर्थडे, और जो आपने शुरू किया है ना हेमंत कुमार का, रियली आई एम वेरी हैप्पी, ही इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिंगर। कितना अच्छा उसके आवाज में दर्द है, और कितनी अच्छी तरह से वो एक एक वर्ड को प्रेजेंट करता है। रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच नीला सेठ।
0: गायक भी हो और फिर म्यूजिक कंपोजर भी हो, बहुत कम होता है, लेकिन आप थे अजीम म्यूजिक कंपोजर थे। और यस सर, टुडे इन हिस्ट्री कहते हैं 1993 केनियन रनर योब्स ओंडिए की मेड एथलेटिक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मैन टू रन द 10,000 मीटर रेस इन लेस देन 27 मिनट्स।

0: योबेज के उंडिएकी का नाम याद रखें सामिन, कहते हैं 1993 में ये पहले खिलाड़ी बने थे 27 मिनट से कम में 10,000 मीटर की दौड़ लगाने वाले, बहुत अच्छे। 1973 द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। बांग्लादेश ने आज़ादी छीनी थी, उनको आज़ादी देनी नहीं पड़ी थी, पर एनीवे आपने कहा आज का दिन ये रिकॉग्नाइज करना है, ओके ठीक है। अब धीरूभाई लखानी आप सुन रहे हैं जुमे का प्रोग्राम, आपने सबको जुमा मुबारक कहा है। ब्रिस्टल से नजू आपने कहा, टू ऑल योर लिसनर्स अराउंड द ग्लोब हैव अ फैबुलस डे एंड सुपर वीकेंड नजू, बहुत शुक्रिया आपका। और प्यार अली ने कौन से गाने के बारे में,
1: प्रवीण जी नहीं मंजिल नहीं राय है, ये गाना फिल्म हिल स्टेशन का है, 1957 की मूवी है, जिसको एचएस बिहारी ने लिखा है और जिसकी धुन हेमंत कुमार ने बनाई है। ये मूवी में प्रदीप कुमार और बीना रॉय ने काम किया था। मूवी खत्म हुई कि न हुई वो मुझको पता नहीं है, गाना अच्छा लगा, चॉइस बहुत अच्छी है उसके, प्याली बाथिया एडवर्ड्स।
0: अच्छा अभी तक सवाल का जवाब नहीं आया कि हिल स्टेशन मुकम्मल हुई थी कि नहीं, हालांकि आसान होगा टू फाइंड आउट, इट मस्ट बी सो इजी। नई मंजिल नई राहें इज अ फेमस सॉन्ग फ्रॉम द क्लासिक फिल्म हिल स्टेशन 1957, डुएट बाय लता एंड हेमंत, ठीक है, म्यूजिक बाय हेमंत हिमसेल्फ एंड पेंड बाय SH बिहारी। थैंक यू रसीला, SH बिहारी भी बड़े अच्छे शायर थे। और रूपल आपने कहा यस, हिल स्टेशन मूवी वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुली, अ प्रदीप कुमार बीना रॉय एंड श्यामा स्टारर ऑफ 1957। अच्छा ये वही फिल्म है कि और कोई है, ये फिर कोई और हिल स्टेशन तो नहीं बनी थी। एनीवे रमेश हरिया, प्रदीप कुमार किरदार में थे, मेन किरदार प्रदीप कुमार और बीना रॉय थे हिल स्टेशन में, ओके ठीक लग रहा है। एंड इट वॉज कम्प्लीटेड। सोनल मोदा, मंजुला गोरसिया का जवाब नंदा, ओके अमिताभ बच्चन की माँ बनी थी नंदा और 12 साल हो गए, ये उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया, देखते हैं सोनल के करेक्ट है कि नहीं। The actress is Nirupa Roy, who passed away in 2004, exactly 12 years before Amitabh Bachchan's real mother, Teji Bachchan, who died in 2007. ML Vishwakarma, आपने कहा Nirupa Roy। लखबीर की बात थोड़ी देर के बाद, हमें ब्रेक लेनी है।
2: East FM, celebrating your favorite occasion. East FM, Kenya's premier Asian mix. Asian mix.
3: East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: East FM.
4: East FM.

जिस अदाकारा की बात हो रही है ना तो वो नंदा है ना निरूपा रॉय है और उनका नाम जेड के साथ शुरू होता है. अमिताभ बच्चन की माँ का उन्होंने एक फिल्म में किया था रोल अदा और आज 12 साल हो गए हैं उनको दुनिया छोड़े. ओके मंजुला गोरसिया के आंसर का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा. मिस्टर मेहता फ्रॉम एम्बू कहते हैं कि आज बिल्कुल करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर मुझे मिला है मिस्टर मेहता का एम्बू से. वेल डन. और द आंसर इज अचला सचदेव. एमएल विश्वकर्मा नो, अचला सचदेव भी नहीं है. रमेश हरिया आपने कहा है, घरों में बताई गई है, मेरी रिस्पांस भी मिला था. 27 अगस्त 1957 में इंडिया के सिनेमा घरों में गई थी और दिखाई गई थी और अच्छा रिस्पांस. अच्छा मेरे ख्याल है हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं आप, मतलब फिल्म बनी थी और मुकम्मल हुई थी. रशीदा इब्राहिम आपने जुमा मुबारक सबको कहा है और आंसर करेक्ट है आपका भी, मतलब दो आंसर्स अब तक करेक्ट मिल गए हैं.

0: जान भेजा।
1: वाह अश्विन दोषी, क्या ये भी उनका बेहतरीन है?
2: Yes, okay, yeah, इतना पॉपुलर नहीं हुआ था परिंजी।
1: Really?
2: Yeah, लेकिन ये okay okay था अच्छा, उस टाइम में।
1: Okay.
2: Yeah, हाँ. Yeah. फिल्म थी ताज।
1: ताज।
2: और परिंजी ताज आई नागिन के बाद।
1: अच्छा।
2: तो ताज के जो प्रोड्यूसर थे
1: हाँ?
2: उनको नागिन की कॉपी करनी की थी।
1: Okay.
2: करके क्योंकि सेम स्टार सेम म्यूजिक डायरेक्टर सेम लिरिक्स डायरेक्टर को एम्प्लॉय किया लेकिन इतना हुआ नहीं।
1: क्या बात है।
2: या कि कॉपी करने की ट्राई की नागिन तो ब्लॉकबस्टर बन गई थी।
1: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
2: या लेकिन ये ताज ठीक ठीक चली। ओके लेकिन ये म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार थे और ये गाना हेमंत कुमार ने गाया है।
1: अच्छा
2: तो ओके लेकिन गाना अच्छा है।
1: बहुत अच्छा है।
2: यस और आज हेमंत कुमार की
1: जी हालांकि आज उनकी बर्थडे नहीं है डेथ एनिवर्सरी नहीं है मेरे दिल में आया कि आज हेमंत को
2: वी हैव टू ऑनर
1: यस ऑनर हिज वॉइस हिज कंट्रीब्यूशन
2: His contribution yeah. as a music director and as a singer.
1: Singer, bilkul, bilkul.
2: Yes, dono.
1: Bilkul, kamal.
2: So, I'm enjoying, Paruji.
1: और पता नहीं, you know, अश्विन किसी ने कहा कि क्या फिल्म हिल स्टेशन मुकम्मल हुई थी कि नहीं, ना जाने क्यों उनके दिमाग में ये सवाल आया।
2: नहीं, हिल स्टेशन रिलीज हुई नहीं परुंजी।
1: नहीं हुई।
2: हुई थी
1: हाँ।
2: हुई थी। तभी तो ये गाने हम सुने
1: yes. कई yes. बार रिलीज से पहले भी गाने सुना देते हैं गाने
2: just to make it popular
1: yeah.
2: just to you see right. क्या होता है कि
1: बिल्कुल
2: this is a trick होती है advertisement की trick
1: true yeah marketing trick
2: बिल्कुल market कर रहे और जो गाना पॉपुलर हो जाता है
1: हाँ.
2: और बाद में फिल्म आती है तो वो हिट हो जाती है।
1: yeah, absolutely. क्या बात है।
2: रिलीज हुई थी परिंजी
1: जी
2: वेरी मच
1: फाइन सो वी हैव गॉट द आंसर ओके
2: थैंक
1: यू अश्विन दोषी समय अश्विन दोषी ने ये बात कह दी है कंफर्म कर दी है और जबीन हिरानी का मैसेज थोड़ी देर के बाद पहले एक और जो है गाना खबरों से पहले हेमंत

0: So Ashwin Doshi, this stage tak to he must have made his name and he was riding high.
1: Yes. You know? That was the starting point.
0: Achha, okay.
1: But after that, Parvinji, he never looked back.
0: Wah, kya baat hai.
1: Yeah, yeah. And that was his starting point.
0: Right.
1: ये film है तांगे वाली.
0: अच्छा.
1: Yes. जिसमें पर्दे पे बलराज सहानी और निरुपा वेगा रहे हैं.
0: Oh God. They were young.
1: Young, yeah. Of course. This
0: at that time.
1: 1955 movie.
0: अच्छा. Okay.
1: Yeah. बहुत popular हुई थी and hit हुई थी.
0: वाह.
1: Yeah. And ये गाना इतने लोग को बहुत पसंद पड़ा था और टांगे वाली की स्टोरी भी अच्छी थी. यस म्यूजिक था सलील चौधरी का और गीत लिखे थे सभी प्रेम धवन ने.
0: अच्छा. हालांकि उस जमाने में टांगे वाला होता था, टांगे वाली बहुत कम थी.
1: नहीं, उसमें स्टोरी है प्रवीण जी कि बलराज सहानी टांगे वाला था.
0: ओके.
1: फिर उसको वो कोई लड़की को बचाने के लिए गुंडों के साथ फाइट करता है तो टांगे वाला मर जाता है. यस. देन निरुपा रॉय टांगे वाला वाइफ टू टेक्स ओवर द बिजनेस.
0: Kya
1: and becomes Tangi Wali. Yes.
0: How unusual.
1: And yes, yes. Isliye story both Parvinji message giving thi.
0: Kya progressive tha iska plot.
1: Yes,
0: hai?
1: Yes. And she becomes a Tangi Wali.
0: Acha.
1: And people supported her and all these things. It was like that.
0: Although it must have been a dangerous profession. Not profession, a dangerous trade.
1: Yes. Yeah. Also, right. There were Shami Kapoor and Anita Guha as a supporting
0: actors. Mein, wo yes. Bhi the. Okay.
1: Wo bhi the. Wo bhi the. Aur film sabko because the plot was good. Salil Chaudhary ka music ye tha. Aur Balraj Sahani aur Nirupa Roy ki acting.
0: कमाल कर दिया. क्या बात है. बहुत ही अच्छी कहानियां भी लिख कर गए हमारे लिखने वाले प्रोड्यूसर्स ने. क्या फिल्में बनाई.
1: यस.
0: थैंक यू अश्विन.
1: थैंक यू.
0: और अब देखते हैं कि पर्दे पर भी देखना पड़ता है. समीन बिंदु बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है. बिंदु फ्रॉम इंडिया. और लोग कहते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ मीठी थी. गाना रिकॉर्ड करते वक्त मुंह में दोनों साइड पर लड्डू रख कर खाते थे. जुमा मुबारक. ये किसने कहा है. रमेश हरिया ने. क्या बात है. अच्छा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था. उनसे पहले जो आए हैं ना उन्होंने ये कहा है कि ना वो ना लड्डू रख के खाते थे. और आपने आंसर, आपने अपना नाम नहीं लिखा. अक्सर जो नाम नहीं लिखते फिर मैं उनको ज़रा इग्नोर करती हूँ क्योंकि आपका नाम बहुत ज़रूरी होता है. और रमेश हरिया ने एक्चुअली क्या लिखा था कि उमर भाई के लिए दिल से दुआएं. और परवीन भट्ट आपने भी दिल से दुआ की है. कोई दुआ कबूल हो जाती है तो उमर को शफा मिल जाएगी. आप जरूर अपनी दुआएं जारी रखिएगा.
2: वेलकम. जुमा मुबारक सारे नु. परमात्मा गुड हेल्थ दे.

0: अच्छा अश्विन दोषी, ये तो बहुत ही आई नो एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग ऑफ हिज है ना, हर एक नेची का भी हुआ है गाना.
1: ये तो एवरग्रीन रहेगा पर
0: जी.
1: आज कितना साल हो गए, मोर देन 70 years.
0: कभी नहीं
1: पतिदा फिल्म रिलीज हुई थी तो अभी भी आपको इतना ही प्यारा लगता है. और हम झूम उठते गाना, हेमंत कुमार लता मंगेशकर का वॉइस और शंकर जय किशन की म्यूजिक.
0: अच्छा, ये भी शंकर जय किशन का?
1: यस यस, और हजरत जयपुरी ने लिखा था परिण जी.
0: अच्छा,
1: और पतिदा फिल्म परिण जी देवानंद और उषा किरण थे उसमें प्रिंसिपल स्टार, एंड हिट बन गई परिण जी
0: पतिता.
1: यस या, और ये गाना और सब गाने उसका जो लता मंगेशकर ने दोनों दो गाने गाए थे, मिट्टी में खेलते हो बार
0: मिट्टी से खेलते,
1: और किसी ने अपना
0: बना के मुझको, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है.
1: ये तो ये और ये ड्यूएट और सब सब सब सब बन होके ये फिल्म को रिमेम्बर बना दिया.
0: वाह क्या बात है. बिल्कुल, मैं कहती हूँ कुछ आवाजों में जादू था है ना.
1: Definitely.
0: ये उस जमाने में तो ये जादू पता नहीं खुदा के पास खत्म ही हो गया है ना, आजकल वो देता ही नहीं है.
1: नहीं, आपने वो अरिजीत सिंह को सुना है?
0: हाँ, वेरी गुड. आई एग्री विद यू. वो कहीं ना अरिजीत सिंह कमाल है. और समन, अभी नाजनीन ने कहा है कि देखो उमर के लिए दुआ में आई इम्प्लोर अल्लाह टू ग्रांट हिम द पेशेंस टू एंड्योर हिज इलनेस विद ग्रेस एंड विजडम. और कहे मे अल्लाह हीलिंग टच बी अ कैटलिस्ट फॉर हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रिकवरी. बहुत शुक्रिया, आमीन. और सांवरे सिलोने आए दिन बहार के, मेरा ख्याल है आगे आ रहा है अमीर अली राना. और है आप परवीन जी, आपके गाने के साथ मंडे से फ्राइडे कहाँ पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता. थैंक यू. और ये हैं शैलेश और शीला सा, शीला और शैलेश, बहुत शुक्रिया. जयश फ्रॉम वोई, कैन यू वन डे कॉल मिस्टर अश्विन दोषी इन योर स्टूडियो एंड इंटरव्यू हिम. वाकई मैं कहती हूँ जयश फ्रॉम वोई, इनसे मैं करती हूँ गुजारिश कि वो मेरे स्टूडियो में आए. बिल्कुल सही कहा आपने. सोनल मोदा, उमर भाई के लिए बहुत दुआएं की हैं. यशपाल चड्डा, प्रे टू गॉड फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ उमर. यशपाल, सो काइंड ऑफ यू फ्रॉम एम्बू. और प्यार अली भाटिया,
2: रिंजे हेमंत कुमार साउथ कहते हैं, जब वो बॉम्बे आए हैं उसको पहला ब्रेक एस टी बर्मन ने दिया. एस टी बर्मन वो दिन में जाल फिल्म का म्यूजिक बना रहे थे जिसमें देवानंद और गीता बाली थे. तो एस टी बर्मन ने हेमंत कुमार को देवानंद के प्ले बैक के लिए गाना उसका रिकॉर्ड किया. ये पहला गाना हेमंत कुमार का एस टी बर्मन के साथ हुआ था. इसके बाद हेमंत कुमार दूसरे फिल्म में गाने गाए.
0: क्या बात है प्यार अली भाटिया, ऐसी इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी होती है. नीला शेत ने उमर के लिए बहुत दुआएं भेजी हैं. गॉड ब्लेस यू, विश यू स्पीडी रिकवरी. बहुत शुक्रिया आपका.
3: हेलो पी जी, कितना सुना गाना वा प्यार से पुकार लो तुम जहां हो तुम हिम्मत कवार. मेरे पास ना वीडियो सी, सिर्फ मेज ते ने हारमोनियम रखा है सीगा, सारे गाने ओदा गाए हुए सी हारमोनियम दे नाल.
0: अच्छा, जतिंदर कहती है कि जो गाना आपने सुना है हेमंत, बस एक होता था हारमोनियम, सब जितनी भी तस्वीरें उनकी हैं वो बस हारमोनियम के पास बैठे हुए हैं. ओके, ऑल फेवरेट्स एंड हिट्स आपने बजा दी हैं रूपल. रुपल आगे भी आ रही हैं सर मैं सोच रही हूं कि वो जो हमारी वॉइसेस इधर उधर ना हो जाएं कहीं तो मैं आपको वॉइस का पहला जो पहली वॉइस है किसकी है आपने दोनों आवाजें पहचाननी है और अरफादीन एंजॉय कर रही हैं हेमंत को क्या बात है लेकिन समिन आपने एक आवाज नहीं देनी दोनों मुझे बताना है कि किन की ये आवाजें हैं
4: क्या हुआ तुम्हारे सरसों के तेल के धंधे का
5: तेल अरे हाँ सरसों का वैसे अब टाइम भी तो नहीं है और वो दामोदर तो चोर निकला 3,000 मार दिए मेरे लेकिन तुम घबराओ मत शीला इस बार जरूर जम जाएगा अपने चुनीलाल ने सलाह दी है कि मैं अगर थोक में गुड़ खरीद लूं
4: गुड़ हो सरसों हो कुछ भी हो कुछ करते क्यों नहीं
5: अरे भाई कोशिश तो कर रहा हूं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लेकिन तुम परेशान क्यों होती हो खाना खा लिए
4: मैं नहीं खाऊंगी
5: अरे फिर गुस्सा
4: गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाती जो सच है उसी पर अटल रहती हूं लेकिन तुम्हारी वजह से
0: ये कौन है ऑफ कोर्स आपको पता चल गया होगा होगा एक्ट्रेस का और फिर एक्टर का भी बड़े मंजे हुए एक्टर दोनों एक्ट्रेस और एक्टर कौन है ये मुझे लगता है कि हो सकता है आप कहें कि एक बार फिर सुना दो
4: क्या हुआ तुम्हारे सरसों के तेल के धंधे का
5: तेल अरे हाँ सरसों का वैसे अब टाइम भी तो नहीं है और वो दामोदर तो चोर निकला 3,000 मार दिए मेरे लेकिन तुम घबराओ मत शीला इस बार जरूर जम जाएगा अपने चुनीलाल ने सलाह दी है कि मैं अगर थोक में गुड़ खरीद लूं
4: गुड़ हो सरसों हो कुछ भी हो कुछ करते क्यों नहीं
5: अरे भाई कोशिश तो कर रहा हूं कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लेकिन तुम परेशान क्यों होती हो खाना खा लिए
4: मैं नहीं खाऊंगी
5: अरे फिर गुस्सा
4: गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाती जो सच है उसी पर अटल रहती हूं लेकिन तुम्हारी वजह से
0: समय कहता है कि मैं क्या करूं वो पता क्या सरसों का ना वक्त नहीं रहा बेचारा कोशिश कर रहा है वो कहता है मुझे दामोदर ने चूना लगा दिया है लेकिन किसी ने कहा है कि मैं ना गुड़ बेच सकता समन गुड़ बेचने के लिए वो कहते गुड़ बेचो या सरसों बेचो प्लीज कुछ करो ये दोनों कौन है पर कमाल की मुझे क्या लगा कि ये डायलॉग बड़ी अच्छी लिखी हुई है वो घिसे पिटे अल्फाज नहीं है ओके 07011106106

अब जो मैंने आपको आवाजें सुनाई हैं वो दो आवाजें किन की थी? कृष्ण सरोय फ्रॉम लंदन, दीप्ति नवल नहीं है। सो मेल आपने गेस कर लिया, ठीक है। मंजू डगर मेल आपने गेस किया, फीमेल नहीं। और बीना पटेल आपने कहा बिंदिया गोस्वामी, नो, मेल आपने गेस कर लिया। मतलब कि द मेल वॉइस ज्यादा लोगों ने रिकग्नाइज की। फर्स्ट कॉलर जिन्होंने मुझे सही जवाब दिया दोनों आवाजों का, यासर, वेल डन यासर। और रोजीना मावजी सेकंड कॉलर टू गिव मी बोथ द आंसर्स और करेक्ट थे। इनके साथ अब कौन है? रोजीना मावजी के बाद आती हैं फातिमा शमून। आपने कहा टू गुड द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। उमर के लिए सबने दुआएं की हैं, वसंत ने दुआएं की है, चंद्रिका वसंत गोसाई ने और प्यार अली भाटिया, अमीर अली राणा सभी ने, जतेंद्र आपके लिए दुआ की है उमर, खुदा आपको शफा दे। फातिमा शमून आमीन और विल मिस यू टुमारो। ओके ठीक है। रूपल आपने करेक्ट, सो थर्ड कॉलर रूपल हैं टू गिव मी द राइट आंसर। थर्ड, वन टू थ्री, यासर, रोजीना मावजी और रूपल। अब एक और आंसर करेक्ट आ गया है और ये किसने हमें कहा है? ये कहा है बलबीर सबरवाल।

0: बाल हैं सबरवाल, बलबीर कौर सबरवाल फ्रॉम एल्डोरेट. बिल्कुल सही जवाब एल्डोरेट से बलबीर. और जैश फ्रॉम वोई, आपने कहा है द लेडी. उफ, लेडी का पता नहीं चल रहा, आई एम ट्राइंग टू थिंक. ओके, पर मेल इज करेक्ट. मंजू डगर, जरीना वहाब है? नहीं. रंजन विनोद, हेमंत कुमार के एक्सलेंट सॉन्ग्स, आई लव हेमंत, बड़ी अच्छी बात है. मंजुला विश्वकर्मा, आपके कॉल को मुझे रोकना पड़ेगा ताकि उसमें अगर है आंसर तो फिर बाकी के यूजलेस हो जाएंगे कॉल्स. और किसी और ने कहा बिंदिया गोस्वामी, बिंदु फ्रॉम जयपुर, नो, बिंदिया गोस्वामी नहीं है. और कल्पना, आपने कहा है कि बिंदिया गोस्वामी, जरीना वहाब, नाइदर, वो नाइदर. और नाजनीन परवीन जी, द आंसर इज ओल्ड मूवी, कौन सी है वो है सुन एज यू मेंशन, गुड, आई कंप्लीट गेव इट अवे. आई एम प्रिटी श्योर द आंसर इज राइट, पद्मा खन्ना एंड अमिताभ बच्चन. नहीं, ये मैंने आवाज़ें सुनाई हैं ना, आपको आवाज़ों पर ही रखना होगा आपका जवाब. यास्मीन एंड मेजर वांजा, आपने जुमा मुबारक कहा है. टीना, आपने कहा है कि ये पद्मा खन्ना और राजेश खन्ना, नो, दोनों रॉन्ग हैं. और अजय देवगन, किसने कहा है, नो, अजय देवगन बिल्कुल नहीं है. सोनल मोदा, इज इट धर्मेंद्र एंड रेखा, नो, नाइदर ऑफ देम. और अब जबीन हिरानी ने क्या कहा है, शी इज प्रेइंग फॉर उमर. समिन, उमर के लिए बहुत दिली दुआएं आपने की है, बहुत धन्यवाद.
1: ईस्ट एफएम, Kenya's premier Asian mix. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
2: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit an export operations manager. A bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or related field, certification in export management or international trade law, and a minimum of 7 years of progressive experience in export operations, logistics or international trade is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
3: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
4: East FM.
3: East FM.
5: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: FM, Kenya's premier Asian mix.
1: जी हाँ, और उमर इन जर्मनी, जय एंड सरोज पनारा ने आपके लिए दिली दुआ भेजी है. और लक्ष्मण सिंह, आपने कहा नीना गुप्ता, नो वो भी नहीं थी. नीला शेठ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दे दिया. अभी देती हूँ करेक्ट आंसर सभी को. और रूपल, सो ग्लैड मंजुला विश्वकर्मा ब्रॉट दिस एब्सोल्युटली. आई वाज हेजिटेंट टू से अश्विन जीज वॉइस मैचेस हेमंत कुमार. क्या बात है रूपल, वाकई जमीन ये हमें एक्सप्लोर करना चाहिए. और अश्विन दोषी को कहना चाहिए एटलीस्ट एक दो लाइनें एक गाने की, उनके गाने की सीख लें. Did you know the legendary actress and dancer Zora Segal is celebrated for her charismatic and emotional poetry recitations? Her signature pieces included Faiz Ahmed Faiz's Nazm, Mujhse Pehli Si Mohabbat Mere Mehboob Na Maang, which she notably recited well into her late 90s. Kehte hai wo padhti thi jis tarah se koi nazm ya ghazal, kehte kamal. Zora Segal, wow. This is Yasser. Yasser, बहुत अच्छे. और sorry, Mr. Lady's name, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बता देती हूँ कि नाम क्या है लेडी का. लेकिन यहाँ पर है जुमा मुबारक from Sally Dar in London. तो समय लेडी थी शबाना आजमी. आप कैसे भूल गए शबाना आजमी को. ओके, आप सब ने कर लिया गैस अमोल पालेकर को. जी हाँ, अमोल पालेकर एंड शबाना आजमी. जिन जिन को मिल गया है आंसर, वेल डन.

0: कमाल ही कर दिया मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ देकर इस गाने को। और समय आगे मैं आपको दूसरा क्लिप भी सुनाऊंगी। यासर आपने ज़िक्र किया है मैडम नूर जहां की उस गज़ल का, वो भी आपके आपको सुनने को मिलेगी। और सेकंड क्लिप जो था समय, दो आवाज़ें हैं, ऑफ़ कोर्स मेल आप गैस कर लेंगे आसानी के साथ, फीमेल जो है समय वो हीरोइन नहीं है, साइड हीरोइन नहीं है, किसी तरह की कैरेक्टर एक्ट्रेस लग रही हैं, जैसे बड़ी भाभी थी इस फिल्म में, और इनका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप नहीं बता सकते तो इट्स फाइन। इनका नाम ए के साथ शुरू होता है, दो नाम है ए एंड एल, तो मे बी यू विल बी एबल टू गेस। लेकिन मेल, आइए देखते हैं कि ये कौन है।
1: रसोई में अब उसे ही तो सब संभालना है।
2: जल्दी से छोटे देवर के नाम एक वकील की चिट्ठी भेज दो, लिखना 24 घंटों के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो मामला कोर्ट में दाखिल कर देंगे।
1: हाँ हाँ भाभी, अभी लो। क्या बात है भाभी, खुलकर बताओ तो सही, क्या क्या माल ले गया है? डिग्री ज्यादा रकम की लेंगे, समझ गई ना? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो भाभी, बच्चे उसके हैं, वो ले गई है उन्हें, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
2: क्यों नहीं कर सकते, आखिर बच्चों को पाल पोस कर किसने बड़ा किया है?
1: अरे ऐसा नहीं हो सकता भाभी, तुम समझती क्यों नहीं?
2: खूब समझती हूँ, तुम्हारी तबीयत नहीं कि मैं बच्चों को यहाँ लाकर रखूं, साफ साफ क्यों नहीं कहते?
0: अच्छा, ये कौन है? ए एंड एल इसका नाम है। लेकिन जो पहले जो मर्द हैं वो तो इजी है, थोड़ी देर के बाद मैं रिपीट करूंगी।

0: नूरजहां। अब चलते हैं, मुझे आंसर मिल गया है, वो है बीना पटेल। वेल डन बीना। और मंजुला विश्वकर्मा ने कहा है कि इसमें अमोल पालेकर हैं, नहीं, हालांकि फिल्म वही है लेकिन अमोल पालेकर नहीं है। फीमेल का आंसर आपने करेक्ट दिया है मंजुला विश्वकर्मा। नीला शेठ ने भी कहा है अमोल पालेकर, नो, अमोल पालेकर नहीं है। और सलमा अहमद, नहीं नहीं ये वो नहीं है। उसी फिल्म को आप रखें दिमाग में जो जिस फिल्म का मैंने आपको पहले सुनाया था। और अब एक बार फिर आपको मैं सुना देती हूँ यही क्लिप जो यहाँ है।
1: रसोई में अब उसे ही तो सब संभालना है।
2: जल्दी से छोटे देवर के नाम एक वकील की चिट्ठी भेज दो, लिखना 24 घंटों के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो मामला कोर्ट में दाखिल कर देंगे।
1: हाँ हाँ भाभी अभी लो। क्या बात है भाभी, खुलकर बताओ तो सही, क्या क्या माल ले गया है? डिग्री ज्यादा रकम की लेंगे, समझ गई ना? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो भाभी, बच्चे उसके हैं, वो ले गई है उन्हें, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
2: क्यों नहीं कर सकते, आखिर बच्चों को पाल पोस कर किसने बड़ा किया है?
1: अरे ऐसा नहीं हो सकता भाभी, तुम समझती क्यों नहीं?
2: खूब समझती हूँ, तुम्हारी तबीयत नहीं कि मैं बच्चों को यहाँ ला कर रखूँ, साफ साफ क्यों नहीं कहते?
0: अच्छा कितना माल लेकर गया है ये तो पता चला है, ये कौन कह रहा है? और सामिन जो माल लेकर गया वो इनका भाई है, वो भाई के बारे में कह रहे हैं कि देखो तो सही जाके कि कितना माल उठा कर ले गया, और वो भी बात कर रहा है अपनी भाभी के साथ। खैर कौन है जो बात कर रहे हैं? ए एल, दो तीन लिसनर्स ने मुझे ए एल का पता दे दिया है, पर जो मेल है वो कौन है?
3: It's 12:18.
4: We unlocked Gavah for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

दिलीप कुमार मीना कुमारी की फिल्म और अब देखते हैं एक और इजाफा हुआ है यानी एक और लिसनर ने सही जवाब दे दिया है किसके बाद बीना पटेल के बाद बीना पटेल के बाद नीला शेठ और मंजुला विश्वकर्मा दोनों तीनों मतलब कि तीनों ने करेक्ट आंसर दिया है नीला शेठ बीना पटेल और मंजुला विश्वकर्मा समय जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो औरतें सामने आकर थाम लेती हैं ट्रॉफी को रूपल ने कहा है कि ये फारूक शेख हैं और दीप्ति नवल नो हालांकि ये उन एक्टर्स में शामिल हैं जिनकी मैंने पहले बात की थी तो ये जो एक्टर हैं वो कभी ग्रे रोल नहीं करते थे बड़े मंजे हुए अदाकार थे और इनके रिश्तेदार भी कुछ नैरोबी में भी रहते थे या हैं जिनकी आज आपको मुश्किल हो रही है आवाज़ पहचाननी और समिन ये एक्चुअली हमेशा वो कमर्शियल सिनेमा में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे जितना कि अल्टरनेटिव सिनेमा में बहुत इन्होंने नाम कमाया था अच्छी अच्छी फिल्में बना कर गए हैं और नाम इनका जी के साथ शुरू होता है जी

और आंसर एक फॉरवर्ड भी आया है, कहते हैं हमेशा रहो पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि एवरी स्टॉर्म इवेंचुअली रन्स आउट ऑफ रेन. वाकई जो भी हो तूफान से बारिश निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है. सोनल मोदा, उत्बल दत्त एंड आशा लता, नहीं वो उत्बल दत्त नहीं थे, वो गिरीश कनाड थे. गिरीश कनाड और आशा लता, ये है आंसर. तो समझ, फिल्म थी अपने पराए, 1980 की रिलीज थी. ऐसा लगता नहीं कि गिरीश कनाड इस तरह की बातें करेंगे. आई मीन यूजुअली बड़े अपराइट कैरेक्टर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ज़रा उनको बुरे किरदार का भी थोड़ा सा तड़का दिया गया है.

0: नौशाद, शकील और लता, क्या जबरदस्त टीम थी। अब चलते हैं दिनेश पोपट के पास, सिड कप लंदन में।
1: नमस्कार परवीन जी, गुड मॉर्निंग, दिनेश पोपट फ्रॉम सिड कप लंदन। आज का शो बड़ा मजा आया, एंजॉयड द होल प्लेलिस्ट। और जब आपने वो गाना बजाया था जनक जनक पायल बाजे का, वो मुझे ले गई थी डाउन द मेमोरी लाइन, क्योंकि वो फिल्म मैंने कंपाला में 1959 में देखी थी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।
0: क्या बात है, सेम टू यू दिनेश पोपट। समय जुमा मुबारक का एक और नायला की तरफ से आया है पैगाम टू ऑल ऑफ यू। समय तलत की आवाज़ सुनी जाए।

कमाल है। अब सामने मेरे जाने का समय आ गया, नीलूफर आ रही हैं, दो गाने आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। हैव अ ग्रेट वीकेंड, इंशाल्लाह मुलाकात अब सोमवार के दिन होगी।

क्यों भाई क्यों नहीं हो सकता. इंसान खूबसूरत बहुत तरीके से होता है. इट्स नॉट नेसेसरली ओनली बाय फेस और बाय लुक्स. इट कुड बी योर सोल, इट कुड बी योर बिहेवियर. इट्स हाउ यू आर काइंड टू अदर्स, हाउ यू यू नो रिस्पेक्ट अदर्स और हाउ यू टॉक टू देम. देर आर मेनी मेनी वेज एंड हाउ डू आई पुट इट. खूबसूरत जो वर्ड है बहुत अलग तरीके से लोगों को प्रेजेंट करता है. राइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. 13 minutes past 1, यूर ऑन रेट्रो टू राइट now with Nilufar on East FM, Kenya's premier Asian mix. Yes, it's Friday. How you doing? Jumma Mubarak. Lovely music coming your way. Ali Mola is next in the vocals of Salim Merchant. This track is so soothing and so soulful. Enjoy.

0: खाली सी जगह थी।
1: तो थोड़ी देर पहले मैंने बजाया था कोई खूबसूरत इतना कैसे हो सकता है, दैट सॉन्ग फ्रॉम अस थ्री, एंड आई सेड दैट यू नो ब्यूटी यू नो लाइज इन हाउ पीपल परसीव यू और हाउ लुक एट यू, इट्स नॉट नेसेसरली ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, देयर इज अ लॉट दैट्स रिलेटेड टू खूबसूरत और ब्यूटी इज द इंटरनल ब्यूटी एज वेल, एंड आई गॉट सो मच रिस्पॉन्स ऑन दैट सॉन्ग, यू नो डेडिकेटिंग द सॉन्ग टू मी एज वेल, एंड दैट गोज फॉर यू टू, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव के एक को जानने के लिए दूसरा इंसान भी वैसा होना जरूरी है, इट ऑलवेज टेक्स वन टू नो अनदर। सोनल हेलो टू यू टू, एंड मी एंड परेश वर डिस्कसिंग व्हाट टू डू द वीकेंड, एंड ही सेइंग दैट भूत बंगला वाज टेरिबल, यस इट वाज पैथेटिक, बट आई वॉच्ड वेलकम टू द जंगल एंड इट्स नॉट बैड, सो हाफ द मूवी इज अ बिट लाइक funny but okay and the

0: What a wonderful track, and that features Aamir Khan and Katrina Kaif. Aamir Khan ka jo combination hai bahut sari actresses ke saath, but sometimes I wonder how he collides and combines with all these tall actresses, because Aamir Khan reality mein kafi short hai, but camera angles and tricks absolutely works, and this is a wonderful, wonderful song in the vocals of Mohit Chauhan. It's 30 minutes past 2. You're on Retro 2 right now with Nilufer.
1: Bollywood and beyond.
0: So this is your segment for your Bollywood gossips and news. Yesterday we talked about Tabahi, the new song of Kiara Advani from the movie Toxic. Aur kafi unki tareef bhi ho rahi hai, unko kafi flak bhi mil raha hai ki kya hai itne bold scenes aur falana dimka, and I'm like, calm down, काम है उनका, एक्ट्रेस का करने दो यार, तुम अपना काम करो जाके बैठ के फालतू में इंटरनेट यू नो फ्री यूज करके लोगों का, यू आर जस्ट सिटिंग एंड ट्रोलिंग. Okay, so what makes me happy is Govinda, you know, my favorite actor, is back in spotlight. He made a special appearance on a show called Lock Up 2 with his daughter Tina, bringing his trademark humor and energy. I think the show is on Netflix. I want to watch, but I haven't got chance yet. Second one, Priyanka Chopra this morning turned heads at Wimbledon with her elegant look, and she even FaceTimed Nick Jonas from the Royal Box, and fans loved the sweet moment. It was such a beautiful sight to see. Nagraj Manjule has addressed Sairat 2 rumors. Sairat is a Marathi film jo bahut hi badi hit hui, it got many awards as well. Uskar upar dhadak bani thi Hindi mein. So says the original story was complete and doesn't need a sequel, despite fans asking for one. इस जबरदस्ती के सीक्वल मेरे समझ में नहीं आते, क्या जरूरत है, मतलब कहानी बनी है, खत्म हो गई, अब उसका सीक्वल बना के क्या मतलब अगले प्लैनेट पे भेजना है इनको, आई डोंट अंडरस्टैंड. जुलाई या अपेरेंटली इज पैक्ड विद बिग बॉलीवुड रिलीजेस. अल्फा आई है, वेलकम टू द जंगल आई थी, कॉकटेल आई, धमाल 4 आ रही है, एंड सेवरल अदर हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म्स, मेकिंग वेरी एक्साइटिंग मंथ फॉर सिनेमा लवर्स एंड यस फॉर पीपल हु आर मेकिंग मनी थ्रू सिनेमा, दैट इज आवर फिल्म मेकर. OTT पे भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट है. दिस फिल्म कॉल बेबी, हाई बेबी ओ बेबी और समथिंग लाइक दैट, हुमा कुरैशी, उसका भी रिव्यूज बहुत अच्छा है. ऑलराइट, स्टे विद मी. व्हाट्स कमिंग अप दिस आवर इज आल्सो स्पॉट द बकवास, एंड द बकवास विल कंटिन्यू. कीप इट ईस्ट एफएम.
1: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.
2: इट्स 2:32.
1: दीस टॉप जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू on myjobsinkenya.com.
3: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit a human resource business partner, commercial, bachelor's degree in human resource management, business administration, industrial psychology, or a related field, and a minimum of 5 to 7 years of progressive experience in human resource, with at least 2 to 3 years in a HR business partner, HR manager, or equivalent strategic HR role required. A postgraduate qualification is an added advantage, and a professional HR certification such as CHRP or HRCI is highly desirable. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
4: Oh,